0: कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
1: आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें।
2: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच हैं, हमारी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। सन 2023 में आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम में आज हम 20वां अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है, टाइमलाइन डिसिप्लिन भी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो केंद्र की तीन प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जहां यूपीए के 10 वर्षों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या रही 7,22,000, वहां एनडीए की 10 वर्षों में संख्या रही 10,96,000, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। और यदि हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंचता है। बैकलॉग रिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली नियुक्तियों की संख्या यूपीए के कार्यकाल में रही मात्र 1,08,000, एनडीए के कार्यकाल में लगभग 5 गुना अधिक 4,79,000। इसी तरह से वर्षों से प्रमोशंस में स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में डीमोटिवेशन देखने को मिल रहा था। आपके नेतृत्व में गत 23 लाख से

0: अधिक गत 12 सालों में प्रमोशंस को क्लियर किया गया है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों कदम उठाए गए, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा हो रहा है और एसएससी पोर्टल में जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस देने का भी प्रावधान उपलब्ध करवा दिया गया है। आंसर की को एक्सेस दिया गया है और ग्रीवंस पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। यदि यूपीएससी की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों को लिए सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रतिभा सेतु यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रहे उन्हें अपनी अनुकूलता से जॉब का ऑप्शन मिल सके। मिशन कर्मयोगी यानी नई जिम्मेवारी ग्रहण करने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए अभी तक 1,72,00,000 यूजर्स अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस में मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाने हेतु सन 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाया गया और इसी वर्ष 2026 में उसका अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ किए हैं। पिछले मात्र 1.5-2 वर्षों के भीतर 6,79,000 से अधिक प्रदेश स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में गत 11 वर्षों में आपने रोजगार एवं जीविका के अनेकों विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदुस्तान के नौजवान में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिलता है। स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर के 2.5 लाख तक पहुंच गई, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि 50% से अधिक स्टार्टअप का ताल्लुक छोटे शहरों और कस्बों से है, जबकि 45% से अधिक वुमेन लेड स्टार्टअप्स है। इसी प्रकार मुद्रा योजना के तहत 66% से अधिक लाभार्थी महिलाएं, स्वनिधि योजना के तहत 50,63,000 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स और विश्वकर्मा योजना के तहत अपने हुनर से अपनी जीविका कमाने हेतु 2,72,00,000 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी, आज भी हर बार की तरह आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ देश भर में 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% लगभग 26,000 का ताल्लुक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ है। अंत में प्रधानमंत्री जी, केवल इतना ही कहना है कि आज जबकि हर योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख करके की जाती है, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज ये नौजवान जो आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प एक ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि सारा देश सेवा संकल्प अभियान मना रहा है। इनके संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो, भारतवर्ष को शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इसी कामना से आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
2: दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत, बीते 12 वर्षों से लगातार अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की हर उपलब्धि के केंद्र में है भारत के युवा और उनकी अटूट संकल्प शक्ति। और जब राष्ट्र सेवा का अवसर स्वयं सरकार में हो तब संकल्प मिशन मोड में बदलता है। यही कारण है कि रोजगार मेला आज पारदर्शी, समयबद्ध भर्ती और युवा सशक्तिकरण

0: का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित युवा गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारतीय रेल, स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सेवाएं देंगे। देश के कोने कोने से चुने गए ये युवा बनेंगे कहीं सुरक्षा की ढाल, कहीं स्वास्थ्य का भरोसा, कहीं बैंकिंग की गति, कहीं शिक्षा की नींव, कहीं रेल की रफ्तार, तो कहीं राजस्व प्रशासन के माध्यम से देश की ताकत। ये सभी कर्मयोगी बनेंगे विकसित भारत 2047 के अहम भागीदार।
1: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।

0: 41 के अहम भागीदार।
1: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, निष्पक्ष चयन और मातृभाषा में परीक्षा की सुविधा ने हर क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित युवा आज के समय की जरूरत के हिसाब से बेहतर भूमिका निभा सकें, इसीलिए मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1.7 करोड़ से अधिक लर्नर्स और 8 करोड़ से अधिक कोर्स कम्प्लीशंस हर कर्मचारी को फ्यूचर रेडी, सक्षम और सिटीजन सेंट्रिक बना रहे हैं। भारत सरकार का हर नया कर्मयोगी ईमानदारी, दक्षता और सेवा के साथ विकसित भारत की आर्थिक नींव को और मजबूती देगा, क्योंकि जब युवा कर्तव्य से जुड़ता है, राष्ट्र निर्माण की शक्ति और बढ़ती है। रोजगार मेला, नियुक्ति से राष्ट्र निर्माण तक।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

0: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
1: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का

भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है।

साथियों, युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर्स का विस्तार होता है। आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है। टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना जरूरी है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा फ्री आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा, युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास हो कि जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं या जिन परेशानियों से आपके माता पिता को गुजरना पड़ा है, उनसे दूसरे युवाओं को न गुजरना पड़े। जो तकलीफें आपके मां बाप ने सही है, जो तकलीफें कभी आपको सहनी पड़ी है, वो अब हमारे देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े, ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आज 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं और आप जैसे नए साथियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप जितना खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना ही बेहतर देश के नागरिकों की सेवा कर पाएंगे। साथियों,

0: आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है, सरकार की असली ताकत देश के नागरिकों का विश्वास होता है। आप किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, आपका काम किसी न किसी रूप में देश के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सबसे तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अभी आप सुन रहे थे 20वें रोजगार मेले के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
2: नहीं नहीं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी। तदनंतर आपने स्वर्गीय अनंत लक्ष्मी वेंकटरामन, स्वर्गीय चालकुडी नारायण स्वामी और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे सुविख्यात संगीत पारखियों के अधीन अपना संगीत प्रशिक्षण जारी रखा। यथाशीघ्र

0: ग्रह आपके संगीत कौशल की परख हुई और आपको 18 वर्ष की आयु में आकाशवाणी में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। संगीत के सफर में तबला विद्वान पंडित किशन महाराज और अनिंदो चटर्जी, साथ ही पाश्चात्य वायलिन वादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरि कुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम केरला हु हैज मेड हिज मार्क अक्रॉस कर्नाटक, हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। बोर्न इन 1980, Hari Kumar began learning the violin from his father at the age of 7 and gave his first recital at the age of 9. He went on to receive training from renowned musicians, including late Ananda Lakshmi Venkataraman, late Chalakudi Narayana Swami, and Dr. L. Subramaniam. His musical accomplishments were recognized early, with Hari Kumar earning the Akashwani A grade by the age of 18. His musical journey has taken him across the world with performances and collaborations with celebrated artists such as tabla maestros Pandit Kishan Maharaj and Anindo Chatterjee, as well as Western violinist Jean-Luc Ponty. He later moved to London, where he founded the fusion ensemble Blue Fire, whose album Breathtaker received acclaims in the world music scene. Known for his innovative approach, Hari Kumar also performs on electric violins with 7 strings and 11 strings, exploring new dimensions in melody, rhythm and cross-genre music.
0: कार्यक्रम में संगत वाद्यकार हैं मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर।
1: In tonight's program, he will be accompanied by Shri Changanashiri K.R. Jayan on the mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam.
0: Shri S. Hari Kumar apne violin vadan ki shuruaat Sant Tyagaraj ke ek panchratna kirtan Jagadananda Karaka se kar rahe hain, raag hai nata, taal adi.
1: Shri S. Hari Kumar begins his violin recital with Jagadananda Karaka, a Panjaratna Kriti by Tyagaraja in the rag Nata, set to Adi Talam.

0: आगे प्रस्तुत है आर वेणुगोपाल की रचना सरिसमाना, जो राग विटपी और आदिताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू सरिसमाना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ आर वेणुगोपाल इन द राग विटपी सेट टू आदितालम।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते, जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम।

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kripaya Palaya, a composition of Shri Swati Tirunal in the rag Charukeshi set to Mishra Chapu Talam.

0: ये था तनिया वर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the ghatam by Shri Anjal H. Krishna Iyer. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the raga Dhanashri set to Adi Thalam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanasheri K. R. Jayan on the mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.